0: कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रूपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रूपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले से योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a six

Standard. घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों देखिए, कहते हैं कि अच्छे विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में हमेशा अमर रहती है। और साथ ही इन मुलाकातों का असर भी हमेशा रहता है। अगर एक बार किसी से मिले तो बार बार मन करता है, यानी अपने दोस्तों से मिलने का बार बार मन करता है। इसलिए हम आपसे मिले यही हमारा मन करता है, और बहुत समय के बाद मिले तो और ज्यादा खुशी होती है। तो एक अच्छा सा खूबसूरत सा सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं गीत तो आपकी नजर, और उसके बाद हम करेंगे बहुत ढेर सारी बातें आपसे आगे। तो जुड़ते रहिए हमारे साथ घर आंगन के इस शो को।

और अब बात करते हैं कुछ आकाशवाणी के 90 सालों के सफर की, क्योंकि 90 सालों के सफर की शुरुआत जो हुई है वो बहुत ही खूबसूरत रही है, और खास तौर पर ऑल इंडिया रेडियो बना आकाशवाणी। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आधिकारिक रूप में बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी का शाब्दिक अर्थ है आकाश से आने वाली आवाज। ये नाम रेडियो की उस शक्ति को दर्शाता है जिसके माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचते हैं। आज आकाशवाणी 23 भाषाओं को यानी 189 बोलियों में प्रसारण कर देश की लगभग 98% आबादी तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है। तो है ना, कितनी खूबसूरत सी बात। तो आकाशवाणी का जो ये 90 सालों का हमारा शुरुआती सफर रहा है, बहुत ही खूबसूरत रहा है, जिससे कि हर देश के कोने कोने तक आकाशवाणी की आवाज उन जन जन तक पहुंचाई जा रही है जो हमारे कार्यक्रमों को सुनना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। पहले की तरह इस साल भी आप harghartiranga.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं, आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त के संबोधन में कवर करने की कोशिश करूंगा।

और अब बात करते हैं दोस्तों, आज महावीर आचार्य महावीर प्रसाद की जयंती है, तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। वे हिंदी साहित्य के एक महान लेखक, संपादक और विचारक थे, जिन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का शिल्पकार माना जाता है और उन्हें हिंदी नव जागरण का भी अग्रदूत कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने सरस्वती पत्रिका के लिए संपादन यानी कि 1903 से 1920 के माध्यम में हिंदी भाषा को उजागर किया। उनका सोचना था कि प्रयत्न और परिश्रम ही बड़ी महिमा है, तो इसीलिए उन्होंने अपना सारा जीवन संपादन और भाषा के सुधार में लगा दिया।

और अब बात करते हैं कुछ आज के दिन की। आज है हमारा कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम होता है शुक्रवार के दिन, एक कदम बुजुर्गों की ओर। जी हाँ, और बुजुर्ग जब तक परिवार में हमारे ना हो तो हमारा परिवार घर परिवार नहीं लगता। और आज है परिवार दिवस। दोस्तों, आज परिवार दिवस पर दिल खोल कर मुस्कुराने का दिन है। परिवार वो छोटा सा जहां है जहां हर चेहरा मुस्कुराता है, हर दिल धड़कता है और हर लम्हा यादगार बनता है। घर की हंसी, माँ की डांट, पापा की डांट, सब कुछ कितना प्यारा लगता है। छोटे छोटे पल, साथ बैठकर खाना, एक दूसरे को छेड़ना और हंस हंस के लोट पोट होना, यही तो है असली जिंदगी। आज अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए, उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने खास है, क्योंकि घर की असली दुनिया है परिवार और असली खुशियां देता है हमारा खुद का परिवार और घर परिवार।

और अब बात करते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर की। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, बुजुर्ग हमारे घर के नींव होते हैं, जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों के साथ खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं। वो तो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ढाल बनकर खड़े होते हैं, और वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब रिश्ते होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब खुश होते हैं। वे घर के बड़े बुजुर्ग ही तो होते हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: और अब बात करते हैं बुजुर्गों के साथ अगर घूमने जाएं तो कुछ बातों का रखें ध्यान। हमारी तरह हमारे बुजुर्ग भी माता पिता की इच्छा होती है कि वो बाहर घूमने के लिए जाएं। हर बुजुर्ग व्यक्ति चाहता है कि वो बदलाव अपने जीवन में और समय निकालना खुद के लिए, हर कोई यही चाहता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ट्रैवलिंग करते हुए हम जब घूमने जाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे जाने से पहले एक बार पूरे शरीर का चेकअप जरूर करवाने, अगर कुछ स्वास्थ्य समस्या है तो पहले से ही पता चल जाएगा, जिससे रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और हाँ, कपड़े पैक करते समय अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी जरूर रख ले, और साथ ही कुछ दवाइयाँ, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो डॉक्टर के परामर्श से आप जरूर ले सकते हैं। बुजुर्गों को हमेशा आरामदायक जगह ही देनी चाहिए। फिर भी चाहे आप गाड़ी से या फ्लाइट से जाएं या ट्रेन से जा रहे हो, तो साथ ही आरामदायक तकिया और ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। बुजुर्गों को कभी कभी खाना अच्छे से हजम नहीं होता, तो अपने साथ कुछ अच्छे स्नैक्स और ड्राई फ्रूट जरूर ले जाएं, जिससे यात्रा के दौरान भूख लगने पर वो उन्हें दे सके। आप सबसे जरूरी बात कि टिकट कंफर्म होने पर ही घूमने की तैयारी करें, तो सफर आसान भी होगा और खुशनुमा भी बनेगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब बात करते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट प्लान की। बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए सरकार खास उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं। अगर समय पर इन योजनाओं का इस्तेमाल किया जाए तो जीवन आराम से चल सकता है। इनमें से आज हम जिस योजना के बारे में बात करेंगे वो है सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट प्लान की। सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत की है जिसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग खाता

कर पैसा जमा करा सकते हैं। और इस योजना के तहत खासतौर पर निवेशक को खासतौर पर जो साधारण ब्याज है उससे अधिक रिटर्न भी मिल रहा है। और उसके लिए आपको बैंक या डाकघर की शाखा में जाकर आवेदन करना होगा। तो फिर देर किस बात की, इस योजना का लाभ उठाइए और अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए।

सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। अब बात करते हैं बुजुर्गों को मानसिक सुकून का हिस्सा जो बना सकती है वो है बागवानी। बुजुर्ग लोगों को और अकेले रहने वाले लोगों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बागवानी से जोड़ा जा रहा है और इस मुहिम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में बागवानी के लाभों से अवगत कराना है, जिसे एक बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। बागवानी दुनिया की सबसे अच्छी और सस्ती दवा है जो उदासी दुख तनाव को दूर करके हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत दुरुस्त करने में काफी मददगार होती है और गमले में लगाए हुए फूल पौधे बेल और साग सब्जियों से एक नहीं अनेक लाभ हैं। अगर आपके पास बहुत सारी जगह नहीं है तो 7-8 गमले बालकनी में रखकर भी बागवानी का आनंद और लाभ दोनों ले सकते हैं और पर्यावरण की सेवा से तितली गौरैया गिलहरी को आवास मिलता है और मन को खुश रखने की मूल चाबी है ये बागवानी।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं।

0: इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहाँ गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: तो आप क्या सुनना चाहते हैं, आपका हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव और आपके विचारों का स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

चलेंगे तो हम जरूर, लेकिन हमारी घड़ी भी कह रही है कि हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने को है। तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री

0: श्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऐसे ना बताऊंगी, आपको एक गाना सुनाऊंगी। तो आइए सबसे पहले ये गाना सुनिए और फिर मुझे बताइए आप ये गाना सुनकर समझ गए हमारी आज की फिल्म कौन सी है।

0: देखिए, मैंने भी एक दुआ मांगी थी जो कबूल हो गई। दुआ ये थी कि मुझे मेरे श्रोता बताएं कि हम कौन सी फिल्म की बात करें और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे कोई सवाल पूछें और आप वो बात हमें बताएं ना। देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है कि आज की फिल्म कौन सी है, उसके बारे में आपको बता दूंगी। पहले ये बता दूं, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में आप गाना सुन रहे थे। और आगे बढ़ें, इस सफर को हम और आगे ले जाएं, उसके पहले एक बहुत जरूरी संदेश सुन लेते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक।

कमेंट्स और आपकी बातें हमारे तक आ रही हैं, हम वो सब बातें करेंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी तक आप प्रोग्राम सुन रहे थे, जी हाँ प्रोग्राम सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और आज हम बात कर रहे हैं 1982 में रिलीज हुई फिल्म शक्ति की। और अभी आपने जो गाना सुना वो गाना था महेंद्र कपूर जी की आवाज में, और हम इस फिल्म के बारे में आपसे और भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये रमेश सिप्पी के निर्माण में ये फिल्म बनी थी, घरेलू बैनर था सिप्पी फिल्म्स का, और इसमें उन्होंने अपने घरेलू निर्माण से बाहर जाकर निर्माता मुशीर रियाजी की कंपनी एमआर प्रोडक्शंस के लिए इस फिल्म का निर्देशन किया था। अपने निर्माण के दौरान ये फिल्म चर्चा में रही और फिल्म प्रेमियों में इस फिल्म काफी उत्सुकता बनी रही। और बस यही हम बातें और भी बताएंगे आपको इस फिल्म के बारे में, लेकिन आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक वो गाना जो इस फिल्म की हीरोइन, जी हाँ देखिए, दो दिग्गज कलाकार तो थे ही, कौन, जी हाँ अमिताभ बच्चन, और उनके साथ थे महान नायक हमारे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब। तो एक तरफ एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ थे हमारे साथ कौन, जी हाँ ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। इन दोनों की जोड़ी ने दोबारा कभी साथ में काम नहीं किया। शक्ति फिल्म एक ऐसी थी जिसमें इनको लाया गया साथ में, और इस फिल्म में दोनों को साथ लाया गया था, लेकिन उसके बीच में तकलीफ क्या थी और क्यों कैसे दोनों साथ में काम करने पर राजी हुए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे एक दोस्त, देखिए यहाँ पर भावसार साहब ने हमें इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख करके दी हैं, उसको हम अपने कार्यक्रम में जरूर इस्तेमाल करेंगे, और हमारे जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सब की बातें भी हम आपसे करेंगे। लेकिन एक गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस फिल्म का, एक और गाना जिसको फिल्माया गया है इस फिल्म की नायिका स्मिता पाटिल पर।

फिल्म शक्ति से, और गाया किसने था? किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर ने। और देखिए हम बात करेंगे आज एक ही फिल्म से में, फिल्म शक्ति की। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि इस फिल्म के दो दिग्गज कलाकार थे अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार, इनके साथ थे राखी, सुधा पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, अमरीश पुरी और अनिल कपूर भी। फिल्म का जो निर्देशन है हमने आपको बताया था रमेश सिप्पी ने किया, लेखक थे वो लेखक जोड़ी जी हाँ सलीम और जावेद। और इसके बारे में आपको बता दें एक चीज और कि इस फिल्म में ना जो लेखन है वो सलीम जावेद की सफल जोड़ी ने किया था। इससे पहले रमेश सिप्पी के साथ इन्होंने अनेक सफल फिल्में दी हैं, जैसे अंदाज है जो 1971 में रिलीज हुई, सीता और गीता 1972 में, शोले 1975 में और शान 1980। ये सारी फिल्मों का लेखन सलीम जावेद की जोड़ी ने किया था। और रमेश सिप्पी मदर इंडिया की तरह एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें पिता को अपने आदर्शों के लिए पुत्र का बलिदान करते हुए दिखाया जाए। उन्होंने ना शिवाजी गणेशन की एक तमिल फिल्म के सारे अधिकार खरीदकर अपने लेखकों की जो टीम है जी हाँ सलीम जावेद के साथ मिलकर उस फिल्म की कहानी को विकसित किया और शक्ति फिल्म की स्क्रिप्ट को तैयार किया। शक्ति फिल्म की जो कहानी और पटकथा और प्रस्तुतिकरण है उसमें सलीम जावेद की जो पिछली फिल्म है जी हाँ कौन सी, दीवार 1975 में जो रिलीज हुई थी, उसका ना साफ असर दिखाई देता है जिसमें मदर इंडिया और गंगा जमुना से प्रेरित है ये जो दीवार फिल्म है। तो हम बात करें आज फिल्म किसकी, जी हाँ शक्ति की। तो और इनकी बात करें और आप लोगों की बात ना करें ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और इनके साथ ही जुड़े हैं हमारे साथ सुरेश जाधव। शक्ति फिल्म हमने सनम को खत लिखा ये गाना इन्हें बहुत पसंद है, शुक्रिया। और इनके साथ है अनीता जाधव नेहरू चौक पैठण से। फिर है राखी जी ने 70 के दशक में बहुत फिल्मों में अमिताभ जी की नायिका की भूमिका निभाई थी, फिल्म शक्ति में अमिताभ जी की माँ की भूमिका निभाई थी। जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। और इस फिल्म में उन्होंने क्यों अमिताभ की माँ बनना स्वीकार किया, क्योंकि वो दिलीप कुमार के अपोजिट हीरोइन के रूप में आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अमिताभ की माँ बनना स्वीकार किया क्योंकि उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करना था। और ये है हमारे साथ पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी, और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इसके लिए शुक्रिया। फिर हमारे साथ है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरासी जिला हिसार से, और इन्हें इन्हें ये फिल्म बहुत पसंद है और गाने तो खैर है ही पसंद। तो संदीप मक्कर हैं, ज्योति मक्कर हैं, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमाल शाहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से बहुत शुक्रिया आप सभी का। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, इन्हें शक्ति फिल्म के गाने सुनकर अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। देखिए हमारे साथ हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरुलाल सिंह, अविराज सिंह, और इन्हें पता है कि हमारी आज की फिल्म है शक्ति, तो भाई फिल्म तो उसी का है, फिल्म वही है शक्ति, तो गाने भी उसी फिल्म के बजेंगे। तो अब हम आपको जो और एक गाना इस फिल्म का सुनाते हैं, और वो कौन सा गाना है देखिए आप बताइए। हाँ

0: ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: देखिए सनम को खत लिखा किसने? सुधा पाटिल ने। और फिर अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे दोस्तों ने हमें क्या क्या लिखा। जी हाँ, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। फिर है हमारे साथ भूषण खेड़ा, फैजल पंजाब, जी हाँ पंजाब से है हमारे साथ। इनके साथ है विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लड्डी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवानशी खेड़ा, वानी खेड़ा और बी खेड़ा। जीवन बुक गीत झुमका गीरा। अच्छा ओके, आपने फरमाइश की है। नहीं आज तो हमको, आज हम आपको सिर्फ शक्ति फिल्म के ही गाने सुनाएंगे। और पंकज

0: देखिए, ये हमारे साथ है राजीव अग्रवाल, केशव प्रयाग, प्रियांशी विवेक, ये हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी वास से, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे और दोस्त, जी हाँ ये हैं गुरमीत सिंह मेहता। अच्छा, आपका तो मैं ईमेल शामिल कर चुकी हूँ। तो देखिए, हमारे साथ जितने दोस्त जुड़े हैं तो ये हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से। फिर हमारे साथ हैं दीवार और शक्ति का टकराव। मेरा मानना था कि शक्ति की कहानी सलीम जावेद की फिल्म दीवार से काफी मिलती जुलती थी। अच्छा, ये लिख रहे हैं कौन, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार। देखिए, इस फिल्म में ना कुल जमा 3 ऐसे गाने हैं जिनको आप गाना बोल सकते हैं, और एक गाना है जो बमुश्किल 1 मिनट पौने 2 मिनट का है। अब इस फिल्म का जो संगीत है, संगीत दिया है आरडी बरमंडे, और इस फिल्म की अगर हम आपसे बात करते हैं दोस्तों, तो इस फिल्म का जो कथानक है वो एक पुलिस अधिकारी है जो है दिलीप कुमार, अश्विनी कुमार उनका नाम है। वो अपने सिद्धांतों और कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उनकी पत्नी की भूमिका में है राखी, जबकि उनके बेटे विजय का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है। कहानी तब मोड़ लेती है जब बचपन में विजय का अपहरण हो जाता है। अपराधी अश्विनी कुमार से एक अपराधी को छोड़ने की मांग करते हैं, लेकिन वे कानून से समझौता नहीं करते। विजय बच तो जाता है, लेकिन उसके मन में यह बात गहरे बैठ जाती है कि उसके पिता ने अपने कर्तव्य को उससे ऊपर रखा। यही भावनात्मक दूरी आगे चलकर पिता और पुत्र के रिश्ते को तोड़ती चली जाती है। विजय धीरे धीरे अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है, जबकि अश्विनी कुमार कानून और सिद्धांतों पर अडिग रहती है। तो ये है इस फिल्म की एक कहानी, कथानक, और इसमें जो एक मास्टर क्लास एक्टिंग रही है दिलीप कुमार की, साथ है अमिताभ बच्चन, एक एंग्री यंग मैन और एक रेस्ट्रेंड, शांत और भीतर दबे भावों वाला अभिनयकर्ता दिलीप कुमार। तो इस फिल्म की बहुत सी विशेषताएं हैं, जिसमें पिता पुत्र के संबंधों पर एक बहुत सशक्त फिल्म है। ये कमर्शियल सिनेमा और सीरियस ड्रामा का एक दुर्लभ संतुलन है। संगीत आरडी बर्मन का है, सलीम जावेद की सशक्त पटकथा है, रियलिस्टिक इमोशनल ट्रीटमेंट इस फिल्म को दिया गया है, और इस फिल्म को फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिले, और दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला, और इसीलिए ये फिल्म बहुत याद की जाती है। तो ये था आज के फिल्म शक्ति का एक आपके साथ हमने इस पूरे सफर को बांटा। चलते चलते बस आपसे इजाजत चाहूंगी, मैं हूँ आपके साथ आज रेडियो हम सफर सोनाली, तो दीजिए मुझे यानी अब सोनाली को इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ दोस्तों, आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से जुड़े हैं, और हम यहाँ पर आपके साथ बात कर रहे थे एक ही फिल्म से, मैं आज फिल्म शक्ति की जो 1982 में रिलीज हुई थी, और अब बस ये सफर यहीं पर हमने आपसे विदा ले ली है, और इस सफर को आगे हम किसी और दिन भी जारी रखेंगे। फिलहाल अब हम आपको बता दें, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी में।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा, पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अज संयुक्त अरब अमीरात दे राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान नाल मुलाकात, मीटिंग ऊर्जा सहयोग ते दवल्ले व्यापार ते केंद्रित। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी वल्लों नीट UG 2026 दी मुड़ प्रीख्या 21 जून नूं करवाउण दा ऐलान। सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विद्यार्थी सरकार दी ताची नहीं ते सरकार उन्हां दीआं चिंतावां प्रति संवेदनशील है। हलवारा हवाई अड्डे ते एयर इंडिया दी पहली उड़ान दे आउण नाल पंजाब दा लुधियाणा भारत दे व्यापारक हवाबाजी नैटवर्क नाल जुड़िया। तेल कंपनियां ने पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां च 3-3 रुपए प्रति लीटर दा वाधा कीता। IPL क्रिकेट विच अज लखनऊ सुपर जायंट्स दा मुकाबला लखनऊ च शामी 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स नाल होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज संयुक्त अरब अमीरात दे राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान नाल मुलाकात कीती। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਦਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ

0: विच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज मंत्री जिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात विच एक सत्कारित शख्सियत दसिया। उन्होंने कहा कि यह दौरा इस साल कई उच्च पदरी मीटिंगा तो बाद होया। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने जनवरी च भारत का दौरा किया। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि नीट UG 2026 की मुड़ परीक्षा 21 जून होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच एजेंसी ने उम्मीदवारों और मापियां सिर्फ NTA के अधिकारित चैनलों पर भरोसा करने की अपील की है। इस दौरान सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्रमुख तरजीह ने और सरकार उन्होंने चिंतावां प्रति संवेदनशील है। आज नवी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी NTA ने 21 जून नीट UG 2026 परीक्षा की मुड़ समा सारणी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक दाखिला कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: सिख्या मंत्री ने कहा कि NTA के अंदर महत्वपूर्ण सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की बेअनीमिया रोकने लिए परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने लिए उपाय किए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी धोखाधड़ी वाले उम्मीदवारों या सिख्या माफिया वालों साजिशा कारण अपने अधिकारों तो वांझा रहे।
1: CBI तहत तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है CBI के ऊपर। सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे।
0: इस तो पहला इस महीने की 3 तारीख को होने वाली परीक्षा कथित पेपर लीक कारण रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। आने वाली राष्ट्रीय योग्यता दाखिला परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करने लिए कल रात ही केंद्रीय सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रिहायश से एक उच्च पदरी मीटिंग हुई। मीटिंग दौरान नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावशाली ढंग से करवाने के वख-वख पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मीटिंग में उच्च शिक्षा सकत्र, स्कूल शिक्षा सकत्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के डायरेक्टर जनरल, CBSE के चेयरमैन, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर समेत होर सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए। पंजाब एयर इंडिया की पहली उड़ान आज सवेरे सनती शहर लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे से उतरी। 3 दहाके पुरानी उम्मीद हकीकत विच बदलन नाल सैकड़े उद्योगपति ते लोग खुश नजर आए। इस उड़ान के नाल लुधियाना भारत के व्यापारक उड़ान नक्शे ते आ गया। रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जो संसद मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी, राजेंद्र गुप्ता ते होरना मुसाफरां दे नाल दिल्ली तों लुधियाना लई शुरू हुई उड़ान च सवार होए ने। इस कारशीलता नूं स्थानक उद्योग ते आर्थिक विकास लई इक वड्डा उत्साह वाला काम दस्सिया। एयर इंडिया ने अपनियां उड़ानां दिल्ली राही बरतानिया ते रोम, मिलान ते पैरिस समेत बाकी यूरोप दे स्थानां लई कौमांतरी संपर्क संभव हो सकेगा। तय प्रोग्राम मुताबक उड़ान AI 481 सवेरे 5:55 दिल्ली तो रवाना होगी ते सवेरे 7:05 हलवारा पहुंचेगी। इस तो बाद वापसी सेवा AI 482 हलवारा तो सवेरे 7:55 रवाना होगी ते सवेरे 9:10 दिल्ली पहुंचेगी। इस तो पहला हलवारा हवाई अड्डे ते टर्मिनल इमारत का उद्घाटन इस साल 1 फरवरी नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सी। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 97.70 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 90.67 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ 106.68 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 93.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਤ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅੱਜ CNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ CNG ਦੀ ਕੀਮਤ 79.09 ਰੁਪਏ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਚ 87.70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਚ 84.12 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 0 ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਮੇਂ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ

0: Benchmark domestic equity indices were trading moderately higher in afternoon trade. Today, the Sensex rose 165 points to 75,563, while the Nifty added 47 points to 23,737 when reports last came in. Meanwhile, in the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 was trading flat, while the small-cap 100 dipped nearly 0.2% a short while ago. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevati East Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vijitsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discussed energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchanged key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS foreign ministers meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NEET UG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन

0: आतंकवाद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। ओमुन को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा करेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स परेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा।

0: बुधवार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुच्चेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4

0: भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सामिन अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 की नशियात समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। सामिन दोपहर के 2:30 हुआ चाहते हैं। पेश खदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
1: और मैं अजीत। नमस्कार। राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं:
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है।

0: मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
0: जी जी जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो बिमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
0: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
0: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओ, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
0: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
0: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
0: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो

0: था खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातु और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातु का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातु अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातु, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातु से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थातु और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार

0: जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
0: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ,
0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 1/6 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
3: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
4: जी सुबेदार साहब।
3: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
4: जी सुबेदार साहब।
3: बोले सोनिहा
4: सत श्री अकाल।

0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
1: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
2: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूजबी में तवानाई से मुतालिक तआवुन और दो तरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, पेट्रोलियम और सरमायाकारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहिम हतनामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने इस्लाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निजाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के अमल में इंसाफ और शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। सीआईए के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने ईंधन के बहरान के दरमियान हवाना में क्यूबा के हुक्काम से मुलाकात की है। और बैडमिंटन में भारतीय मर्दों की सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बातचीत में तवानाई से मुतालिक तआवुन और दो तरफा तिजारत खास मौजूदात रहे। ये बातचीत मगरबी एशिया में जारी तनाजे की वजह से आलमी सप्लाई में रुकावटों के पस मंजर में की जा रही है, जिसमें उम्मीद है कि दोनों फरीक तेल के जखीरों और गैस सप्लाई इंतजाम के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। दौरे से पहले यूएई के बैन अल-अक़वामी तआवुन की वजीर ममलकत रीम बिनते इब्राहिम अल हाशमी ने वजीर आजम मोदी को यूएई में एक मुमताज शख्सियत करार दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये दौरा महज इसी साल के दौरान आला सतह के बहुत से दौरों के बाद किया जा रहा है। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत

डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इन सरगर्मियों की वसत से इस बात की अहमियत का अंदाजा होता है कि सभी रहनुमा तेजी से बदलती हुई इस दुनिया में कसीम मुल्की तआवुन को मुस्तहकम बनाने में शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैनुल अक्वामी माली तरीकेकार में इस्लाह की फौरी जरूरत है। वजीर खारजा ने कहा कि भारत ने इस्लाह शुदा कसीर मुल्की निजाम की लगातार वकालत की है, जो एक ऐसा मुल्क है जो मौजूदा दौर के हकायक की अक्कासी करता है और उभरती हुई मार्केट्स नीज तरक्की पजीर मुल्कों की उमंगों पर काम करता है। उन्होंने कहा कि हर एक मुल्क को न सिर्फ आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए बल्कि एक मजीद जमहूरी सबकी नुमाइंदगी करने वाले और मसावियाना बैनुल अक्वामी निजाम को तश्कील देने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जयशंकर ने बताया कि दोनों लीडरों के दरमियान मगरबी एशिया की सूरत हाल और उसके असरात के सिलसिले में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहमी मफाद के दो तरफा मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स के वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग में जनाब अराग़ची की शिरकत को भी सराहा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि तलबा हुकूमत की तरजीह हैं और वो उनके तई हसास हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो तलबा इस इम्तिहान में दोबारा शामिल हो रहे हैं उन्हें अगले महीने की 14 तारीख तक इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि नीट यूजी इम्तिहान अगले साल से मौजूदा ओएमआर पर मबनी तरीकेकार के बजाय कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के तरीके से कराया जाएगा। तालीम के वजीर ने एतराफ किया कि एनटीए को वाज़े इस्लाहात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कोई बदउनवानी न हो इसके लिए इम्तिहान के निजाम को मुस्तहकम बनाने के इकदाम किए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। क्यूबा में जारी तवानाई के बहरान के दौरान सीआईए के डायरेक्टर रेडक्लिफ ने हवाना में क्यूबा के वजारत दाखिला के हुक्काम के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने एक दूसरे को खुफिया मालूमात फराहम की और सिक्योरिटी और माशी इस्तेहकाम जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया। अमरीका ने कहा है कि वो क्यूबा के साथ तआवुन के लिए तैयार है बशर्ते कि क्यूबा खातिरख्वाह इस्लाहात के लिए आमादा हो। क्यूबा में पाबंदियों के बाइस तेल की सप्लाई में कमी आई है जिससे वहां ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। इसे निपटने के लिए अमरीका ने क्यूबा को 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है। ईंधन की कमी से क्यूबा के अस्पतालों स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में कामकाज पर असर पड़ा है। क्यूबा ने कहा है कि वो इमदाद के मामले पर बातचीत के लिए तैयार है लेकिन उसने अमरीका से इक्तिसादी बंदिशें हटाने की बात भी कही है। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि सीआईए के डायरेक्टर ने सदर ट्रंप का पैगाम उनको पहुंचाया है कि वो क्यूबा के माशी और सलामती के उमूर पर तआवुन के लिए तैयार हैं बशर्ते कि क्यूबा पॉलिसी में तब्दीली करे। कीव पर किए गए रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत कम से कम 21 अफराद हलाक जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की हंगामी सूरतेहाल से मुतालिक खिदमात के मुताबिक मजकूरा हमले में घरों एक स्कूल जानवरों के इलाज से मुतालिक एक क्लिनिक और दीगर शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी जिनमें से ज्यादातर कीव को निशाना बनाकर दागी गई थी। यूक्रेन के दिफाई निजाम ने मुबैना तौर पर ज्यादातर मिसाइलों को नाकारा बना दिया लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर जा गिरी जिसकी वजह से एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मजकूरा हमले से पता चलता है कि रूस जंग के खात्मे के तई संजीदा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती जैसे उमूर पर तातुल के बावजूद तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तआवुन पर जोर दिया है। अपनी दूसरी मुद्दत कार के दौरान चीन का सदर ट्रंप का यह पहला दौरा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आबनाई हुर्मुज़ को तवानाई की तरसील के लिए पूरी तरह खुला रखा जाना चाहिए। ईंधन के लिए मगरबी एशिया पर इन्हिसार को कम करने के लिए चीन की तरफ से मजीद अमरीकी तेल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की गई। सदर ट्रंप ने चीनी अशिया पर भारी महसूलात को फिलहाल रोक दिया है जबकि चीन ने नायाब मादनियात की सप्लाई

तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, जब मैं तेरी मिट्टी का।

दो आना, नहीं है तो दासी कैसी मेरी तुम। जिंदगी है क्या तुम मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जबान। प्यार तुझे देगा वो मालिक, वो प्यारी जबान मैं।

0: मोहम्मद रफी के गाए माया फिल्म के इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी मुजीब सिद्दीकी ने।
1: शहनाई की दुनिया में शहनाई बजाने के सिलसिले में एक नाम जिसके सभी मोतरिफ हैं, एक ऐसा फनकार जो एक तवील अरसे से इस फन के मैदान में अपने फन का मुजाहरा कर रहा है और इस अंदाज में कर रहा है कि शायद उसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका। मेरी मुराद उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब से है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब इस वक्त हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। हमें मौका मिला है कि उनसे कुछ बातें की जाएं, अपने सुनने वालों को सुनाई जाएं इनके फन के बारे में, इन्हीं की जबानी। तो खान साहब, बिस्मिल्ला आपका नाम है और बिस्मिल्ला शुरू का लफ्ज या हर्फ आगाज समझा जाता है
2: जी।
1: शहनाई के बजाने के सिलसिले में लोगों का ख्याल है
2: जी
1: कि आपका नाम हर्फ आगाज भी है और हर्फ आखिर भी।
2: बहरहाल ये तो खुदा का अलग करम है,
1: क्योंकि देखिए ना, शहनाई को जो ये मकाम दिया, खुद शहनाई साज को मैं कह रहा हूँ
2: जी जी,
1: आज जो दुनिया में इसका मकाम बुलंद हुआ वो आमतौर से ये लोगों का ख्याल है और मैं समझता हूँ कि हक बजाने भी कि आपकी ही बदौलत ये मकाम शहनाई को मिला।
2: ये तो दुनिया कहती है और बहरहाल उनके सामने जो चीजें आई वो तो वही कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने क्या मेहनत की है, किस तरीके से रियाज किया है और किस किस मुसीबत से इसको हासिल किया है और उनके जरिए से मुझ तक मिला और अल्लाह का करम है। आज दुनिया क्या कह रही।
1: सही। अच्छा खान साहब, आपकी शहनाई बजाने में, शहनाई बाज में
2: जी
1: आमतौर से ख्याल होता है कि जैसे जब आपकी शहनाई बज रही होती है कि जैसे गला बोल रहा हो
2: जी,
1: गायकी बज रही हो
2: जी जी,
1: अस्थाई अंतरे का जो उतार चढ़ाव है
2: जी,
1: तो उसमें वो पूरब की ठुमरी वगैरह के लगता सीधे सीधे बोल
2: हाँ
1: जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या?

0: अपनी उम्र से शहनाई।
1: ये तो भाई साहब तकरीबन 6 साल के जब हम थे, हमारी वालदा का इंतकाल हो गया था, हमारे मामा और हमारे नानी और नाना ने पाला, तो वहीं चले आए और वहीं अपना ये हुआ कि साहब थोड़ा सा उर्दू और थोड़ा सा हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ खत वगैरह हम लिखने लगे। लेकिन मैं स्कूल से जरा भागता था खेलने में, ये हमारी आदत थी। मामू ने देखा कि इसका टाइम बिल्कुल बर्बाद होगा, ये पढ़ने में इसका ध्यान नहीं लगता, बस इतना काफी हो गया कि ये कुछ खुदूत लिख लेता है, पढ़ लेता है, वो इसको ले लो। तो वो हुआ क्या कि उन्होंने जो हमको अस्थाई अंतरे बताए उन्होंने नोट कर लिया और कभी भूलते तो उसको देख के याद कर लेते थे। उन्होंने हमको सारा टाइम हमको संगीत में दे दिया और हमको बचपन से इसी का शौक भी था।
0: अच्छा जी, अच्छा बचपन में जब आपको उन्होंने सिखाया शहनाई जी, तो क्या आपको ऐसा उस वक्त आपका दिल चाहा कि शहनाई के बजाय कोई और साथ सीखते?
1: नहीं, चूंकि चूंकि हमारे घर की चीज थी ना, एक तरफ एक कमरे में बड़े मामू बजा रहे हैं, एक तरफ मझले मामू बजा रहे हैं, एक तरफ छोटे मामू बजा रहे हैं, एक तरफ हमारे वालिद साहब हैं वो हमारे बड़े भाई से, वो तो हर वक्त यही माहौल हमारा बना है। वो शौक ही इसमें आ गया हमारा कि हम इसी को लें। लेकिन उसके साथ साथ ये था कि वो लोग गाते भी थे, बाजे बाजे वक्त मामू बैठे अस्थाई अंतरा याद कर रहे हैं, वो गाना भी सुन रहे हैं, तो हम खेलते खेलते कभी गाना भी गाते थे, बोल क्या ये पता नहीं।
0: अच्छा।
1: खेल रहे हैं लेकिन वो गाना, वो धुन जो है उसकी वो चल रही है, और छोटा सा साज उन्होंने बना दिया था जो साज हम लोग बजाते हैं, इससे बहुत ही छोटा पतला साज, और दिन भर खेल भी रहे हैं, उसको भी टें टें इधर उधर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं। लेकिन 6 साल की उम्र से शुरू करने के बाद 12 साल में प्लेटफॉर्म पर हम आ गए थे,
0: स्टेज पे
1: जी।
0: अच्छा,
1: और इस तरीके से आए कि वो सनद हमको, वो तारीख हमें याद है, हम सन 16 में पैदा हुए और सन 30 में कॉन्फ्रेंस हुई है इलाहाबाद, डी आर भट्टाचार्य साहब, उसमें फैयाज खान वगैरह ये सब लोग गए हुए थे, पुराने लोग, अब्दुल अजीज खान साहब,
0: अच्छा
1: ये सब लोग गए थे। उसमें हमको हमारे मामू ने बैठा रहा था, तो हमने केदारे की गत बजाई थी और वहां पर वो तमगा जो था हमारे मामू को मिलने वाला था कॉन्फ्रेंस का, तो फैसला हुआ ये कि भाई खान साहब आप लोगों ने तो बड़ा नाम किया लेकिन ये आइटम का हकदार ये लड़का है, वो तमगा अब तक हमारे पास है।
0: अच्छा। और जाहिर है कि उस पर आपको बड़ा नाज होगा।
1: बहरहाल वो तो एक सनद है और एक तारीखी चीज है वो,
0: और आपके मामू जो आपके उस्ताद थे उनको भी बेहद खुशी हुई होगी।
1: अरे पर न पूछिए कि उन्होंने वहां से आने के बाद क्या किया, अब आपको मैं क्या बताऊं। घर में आने के बाद मैं खाला वगैरह थी, माँ तो इंतकाल कर गई थी, खाला वगैरह थी, भाई काम करूंगी क्या, कि नोन मिर्चा आवार दो इस पर, मतलब
0: नजर
1: नजर में लगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि खुद गए बाजार से बालाई लाए, बालाई लाने के बाद एक उंगली पहले खा लिया तो हमें खिलाया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा, फिर उस वक्त से जाहिर है कि आपकी भी बड़ी हौसला अफजाई उस प्रोग्राम से।
1: हाँ, बचपन से शौक था। हाँ, बचपन से लगाओ तो संगीत से जरूर था, इसमें कोई कलाम नहीं।
0: तो रियाज फिर आपने कितना शुरू किया?
1: रियाज हमने समझ लीजिए कि 6 साल की उम्र से वैसे तो चले, लेकिन जब करीब करीब 10-12 साल के हो गए तो बहुत अच्छा खासा रियाज होने लगा, बड़ा साज मिल गया, और उसके बाद मामू हमारे साथ बैठने लगे। पहले शुरू में तो आधा घंटा 45 मिनट ये टाइम था, लेकिन आखिर में आते आते 3.5-4 घंटे मामू भी बैठे और मैं भी बैठा हूँ
0: लगातार,
1: हर रोज लगातार, किसी दिन नागा नहीं। वही जब मुहर्रम का जमाना आता था
0: सही,
1: तो उसमें हम छोड़ देते थे, हमारे मामू भी छोड़ देते थे, और माह श्याम का जमाना आता था, इसमें चूंकि रोजा रखते थे तो इतनी मेहनत नहीं हो सकती, लेकिन इसमें भी रोजा खोलने के 2 घंटे के बाद खाना वाना खाने के बाद 15-20 मिनट सांस देखते थे।
0: अच्छा, खान साहब शहनाई, वैसे तो शहनाई के साथ जो तस्वुर है वाबस्ता
1: जी,
0: वो खुशी का है, मसरत के लम्हा।
1: हाँ हाँ,
0: शादी
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें आपने कभी गम के सुरों को और गम की कैफियत को और उस तासुर को घोलने की कोशिश की, आपको कामयाबी मिली इतनी ही जितनी खुशी के?
1: नहीं, ऐसा है कि स्वर भी 2 किस्म के होते हैं। देखिए, है कि एक स्वर ऐसा होता है कि वो सुर लगा तो इंसान वाह करता है, आह बड़ी अच्छी तारीफ थी भाई, वाह वाह वाह, और एक सुर भी लगा तो उसको वाह करने की ताकत नहीं बल्कि हाय करता है।
0: क्या कहना,
1: सही। अच्छा, वो हाय में क्या होता है कि हाय एक दो मर्तबा करेगा लेकिन उसके बाद फिर वो सकत नहीं रह जाएगी, वो मोहबे हैरत रहेगा और देखता रहेगा कि क्या बातें पैदा हो रही, और उसको वो सुर जो है खींच के उसके दिमाग को कहां पहुंचा देता है कि जैसे कोई जंगल है और कोई फरियादी अपने परवरदगार से फरियाद कर रहा है, तो फरियाद करने वाला जो है तो गिड़गड़ाएगा ना, और गिड़गड़ाने में जाहिर है कि आंसू निकलेंगे। जब इस किस्म का तसव्वुर उसको होगा तो ऐसे मौके पर वो सुर कैसा बोलेगा खुद फैसला करें।
0: बहुत सही है, बहुत अच्छा।

सामिन लीजिए, अब सुनिए आशा भोसले और अभिजीत की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया है जतिन ललित ने। फिल्म है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

अनुराधापुर वाल की आवाज में आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म का नगमा, नगमा निगार थी समी, मौसीकार नदीम शर्वन। प्रोग्राम की अगली पेशकश गैलन जॉन की आवाज में वो लम्हे फिल्म का नगमा, नगमा निगार सईद कादरी, मौसीकार प्रीतम।

मोहम्मद रफी और साथी को सामने भी आप सुन रहे थे। फिल्म थी एक बार मुस्कुरा दो, मौसीकार थी उपिनैयर। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ही हसास हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने ऐलान किया है कि 2026 यूजी नीट का दोबारा इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि तलबा जो इस इम्तिहान में दोबारा शामिल हो रहे हैं उन्हें अगले महीने की 14 तारीख तक इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि नीट यूजी इम्तिहान अगले साल से मौजूदा ओएमआर पर मबनी तरीकाकार के बजाय कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के तरीके से कराया जाएगा। तालीम के वजीर ने एतराफ किया कि एनटीए को वाजह इस्लाहात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कोई बदउनवानी न हो इसके लिए इम्तिहान के निजाम को मुस्तहकम बनाने के इकदाम किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के उनके हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान अहम बातचीत हुई जिसमें अमरीका और चीन के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में अहम पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। अगरचे दुनिया की इन दो बड़ी ताकतों के दरमियान ईरान, ताइवान और कई मामलात पर इख्तलाफात बरकरार हैं, सदर ट्रंप ने नामा निगारों को बताया कि वो और चीन के सदर ईरान में तनाजा को खत्म करना चाहते हैं और इसके हक में है कि ईरान न्यूक्लियाई हथियार का हामिल न हो। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बहुत अच्छी तजारती डील्स हुई, अगरचे उन्होंने इस सिलसिले में तफसीलात नहीं बताई। चीन की हुकूमत का कहना है कि उसके और अमरीका के दरमियान कई नए मुफाहमतनामे हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कीव पर किए गए रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत कम से कम 21 अफराद हलाक जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की हंगामी सूरत हाल से मुतालिक खिदमात के मुताबिक मस्कूरा हमले में घरों, एक स्कूल, जानवरों के इलाज से मुतालिक एक क्लिनिक और दीगर शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन्स और 56 मिसाइलें दागी जिनमें से ज्यादातर कीव को निशाना बनाकर दागी गई थीं। यूक्रेन के दिफाई निजाम ने मुबैना तौर पर ज्यादातर मिसाइलों को नाकारा बना दिया लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर जा गिरी जिसकी वजह से एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मज़कूरा हमले से पता चलता है कि रूस जंग के खात्मे को लेकर संजीदा नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने इत्तेहादियों से अपील की कि वो इन हमलों का जोरदार तरीके से जवाब दें। शुमाल मशरकी जमहूरिया कांगो में एबोला वायरस फूट पड़ने से 35 अफराद हलाक और सैकड़ों मुतासर हुए हैं जिसकी वजह से ये तश्वीश पैदा हो गई है कि कहीं ये बीमारी सरहदों के पार भी न फैल जाए। तकरीबन 246 अफराद के बारे में एबोला से मुतासर होने का शुबा है। बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के अफ्रीका के मरकजों ने बताया कि इस सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए आज इलाकाई सेहत हुकाम ने एक हंगामी मीटिंग मुनाकिद की है। रेंथम बासो को मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली का बिला मुखालिफत स्पीकर चुन लिया गया है। जनाब बासु जो भारतीय जनता पार्टी के कानून साज रुकन के तौर पर कोच बिहार जनूब की नुमाइंदगी करते हैं उन्होंने असम्बली इंतखाबात में अपनी पहली कामयाबी के बाद ये ओहदा पहली बार संभाला। उनका इंतखाब प्रोटेम स्पीकर तपिस रॉय की निगरानी में आज सुबह किया गया। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने जनाब बासु का नाम बाकायदा तौर पर तजवीज किया था। ऐवान ने इस तकर्र की सौती वोट से तस्दीक कर दी। तृणमूल कांग्रेस के अरकान इंतखाबी अमल के दौरान मौजूद नहीं थे, अलबत्ता उन्होंने इजलास में बाद में शिरकत की। क्यूबा में जारी तवानाई के बहरान के दौरान CIA के डायरेक्टर रैटक्लिफ ने हवाना में क्यूबा की वजारत दाखिला के हुक्काम के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने एक दूसरे को खुफिया मालूमात फराहम की और सिक्योरिटी व माशी इस्तेहकाम जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया। अमरीका ने कहा कि वो क्यूबा के साथ ताउन के लिए तैयार है बशर्ते कि क्यूबा खातिरख्वाह इस्लाहात के लिए आमादा हो। क्यूबा में पाबंदियों के बायस तेल की सप्लाई में कमी आई है जिससे वहां ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारत की मर्दों की सरकर्दा जोड़ी सित्वक साई राजरंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। उन्होंने 21-12, 21-13 से कामयाबी हासिल की। इस जोड़ी ने जापान की ताकोमी नोमोरा और योइची शिमा गोमी को शिकस्त दी। खवातीन के सिंगल्स में दुनिया की 12 नंबर और ओलंपिक्स में 2 बार तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान की एकान

0: यामागुची को क्वार्टर फाइनल में 21-19, 18-19 और 15-21 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूजबी में तवानाई से मुतालिक ताउन और दो तरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, पेट्रोलियम और सरमायाकारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वज़ीर खारजा डॉ जयशंकर ने इस्लाह शुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के अमल में इंसाफ और शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुजाकरात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात की अहम पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: सामिन, अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। सामिन, अब से लेकर रात के 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज, मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज, FM सावा शेरे 1 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम वेव 9:15 किलोहर्ट्ज, मीडियम वेव 9:25 किलोहर्ट्ज, FM 11.1 MHz या मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR का नचस आकाशवाणी करगिल का नजर न्यूज दिनिंग जाको शुक्र माइल जे चोगा दिनिंग फ्रोचु पौध पी प्रोग्राम खुरे गचायती दोनों लफ्सित गची जूना सलाम पो फ्रोतमोचन सोशिक सख वसखनल्ला दुआया प्रोग्राम सदाकल्ला गुजुबित दी प्रोग्राम में रक्से का नन मजर सखमा कुरानी तिलावत न तर्जुमा मुल्खान पुइन फिरोज खान ना शेख मोहम्मद ईसा हाफिज।

किरदार साजी में अहम रोल अदा करें, जो माँ की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। माँ का खून बच्चे का जुस व बदन बनता है। माँ की गजा सोच, जज्बात और हरकत व सकनात का बराह रास्त असर पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे पर होता है, और पैदाइश के बाद भी बच्चा हमेशा माँ से चिमटा रहता है। इसलिए इनकी हर हरकत और हर अदा से वो बराह रास्त असर लेता है। ऐसे में माँ को अपने बच्चे की दीनी व अखलाकी, अकल व शुऊर के हवाले से बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। निपुलिन ने क्या खूब कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। इससे साफ जाहिर होता है कि किसी माशरे की तामीर और मुल्क व कौम की तरक्की में माओं का कितना अहम रोल होता है। इसलिए माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को अच्छी बोल, अच्छा लहजा और महज़ब गुफ्तगू का सलीका सिखाएं। इसको दीन की आदाब सिखाएं। माँ अपने अमल व किरदार से बच्चों को दीन व अखलाक का दरस दें। अपने बच्चे की ईमानी अफजाइश के साथ इसकी दिमागी नशोनुमा, पुख्तगी और सलाहियतों पर भी खुसूसी नजर रखें, क्योंकि बच्चा जितना जहीन, फ़ाल और बाशूर होगा उतना ही कामयाब होगा। माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट होता है। एक माँ अपने बच्चे की जहनी, जिस्मानी, समाजी, जज्बाती नशोनुमा और इर्तिका में एक अच्छे टीचर का रोल अदा करती है। तो सामिन, यहाँ मैं आपको एक वाक़े का जिक्र करता चलूँ कि किसी बासलाहियत शख्स ने इम्तिहान में कामयाब बच्चों की तकसीम इनामात के प्रोग्राम के वक़्त एक बात कहा कि वो अपने बच्चों को तालीम के साथ अच्छी तरबियत सिखाएं। उन्होंने एक वाक़या सुनाया। तकरीबन 10 साल का लड़का अखबार बेचने वाला घर के गेट के बाहर बार बार घंटी बजा रहा था। मालकन बाहर आई और पूछा, क्या बात है बच्चा? बच्चे ने कहा, आंटी जी, आज अखबार तो नहीं है, पर क्या मैं आपकी बागीचे की सफाई कर दूं? मालकन ने कहा, नहीं, हमें जरूरत नहीं है। बच्चा तरस भरी आवाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, मालकन कर दो ना। मालकन बोली, ठीक है, कितना रुपया लोगे? लड़का बोला, पैसा नहीं चाहिए आंटी, सिर्फ खाना दे देना। मालकन ने कहा, चलो ठीक है। सोचा, शायद ये लड़का गरीब है और भूखा है, पहले इसे खाना दे दो। ए लड़का, पहले खाना खा लो फिर काम करना। बच्चा बोला, आंटी, पहले मुझे काम करने दो फिर खाना दे देना। मालकन ने कहा, ठीक है। बच्चा अपने काम पर लग गया और 1 घंटे बाद बोला, आंटी जी, देखिए सफाई अच्छी तरह से हुई है या नहीं। मालकन, वाह, तुमने बहुत अच्छी सफाई की है, गमले भी अच्छी तरह से रख दी गई है, बैठो मैं खाना लाती हूँ। लड़के ने जेब से प्लास्टिक की थैली निकाली और खाना इसमें रखने लगा। मालकन बोली, भूखे भूखे काम तो कर लिया, भूख बहुत लगी होगी, अब यहाँ बैठकर खाना खा लो, जरूरत पड़ी और भी दूंगी। बच्चा बोला, नहीं आंटी, मेरी अम्मी बीमार हैं, घर पर अकेली हैं, सरकारी अस्पताल से दवाई ले आई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि दवाई खाली पेट ना देना, ये खाना मैं अपनी माँ के लिए ले जा रहा हूँ। मालकन रो पड़ी और अपने हाथों से इस मासूम बच्चे को दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया। फिर इस बच्चे की बीमार माँ के लिए रोटियां बनाए और इस लड़के के साथ उसके घर जाकर माँ को रोटियां दिए और कहने लगी, बहन, आप बहुत अमीर है, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है हम अपने बच्चों को देने के काबिल नहीं हैं। खुदा ऐसे बच्चे उनको देता है जो बहुत खुश नसीब होते हैं। तो सामने इस तरह माँ की अच्छी तरबियत से बच्चा काबिल और जहीन बनता है। इसलिए कहते हैं कि जन्नत माँ की कदमों तले है। जरा सोचिए, क्या जन्नत को यूं ही माँ की कदमों तले डाल दिया गया? नहीं, बल्कि जितना बड़ा ओहदा दीन इस्लाम से एक औरत को मिला है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। बच्चा यहीं से अच्छे और बुरे की तमीज सीखता है। माँ बाअमल और बाकिरदार है तो बच्चे की सीरत व किरदार पर भी इसी का असर होगा। कहते हैं, माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह होती है। इसी तरबियत पर बच्चे की शख्सियत पर परवान चढ़ती है। अखलाक की जो तरबियत माँ की गोद में होती है, इसी तरबियत पर बच्चे की सीरत के बनने या बिगड़ने का इन्हिसार होता है।
اولاد کی اچھی تربیت

0: دخسن څخه پینتس پورګي خبرونه لاس نه وینئ پین میډیا مې کا دی آکاش باندې کلګلین واس په توسو د غنه فت څنسو کساتار دلوک سی هاګورې کین مزه ډاکټر شاه ولی الله کنا
1: श्रोताओं नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। श्रोताओं, हम बहुत बार देखते हैं आए दिन में हमारे परिवार में ये चर्चा होती है, महिलाएं चर्चा करती हैं या किसी व्यक्ति को ये दिक्कत होती है कि भाई कमर दर्द हो रहा है। अब हम बहुत बार वो कमर दर्द क्यों हो रहा है, कमर दर्द किस प्रकार का है, हम बहुत बार ये ढेर सारी बातें नहीं जानते होते और उसको ऐसे सामान्य दर्द के तौर पर लेते हैं और कई गंभीर बीमारियों को या कई गंभीर स्थितियों को आमंत्रित कर देते हैं। अब ये ढेर सारी बातें हम जानते नहीं होते, हम ये ढेर सारी बातें इसलिए नहीं जानते होते क्योंकि कई बार हमारा वास्ता इन सब चीजों से नहीं पड़ता या हम इसमें जानकारी नहीं रखते हैं। जानकारी हम रखेंगे कैसे? जानकारी हम ऐसे रखेंगे कि जब हम किसी विशेषज्ञ से बात करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो उस विधा का महारथी हो, उस विधा में काम कर रहा हो। तो दोस्तों, ऐसे ही एक विशेषज्ञ के जीएमयू के एडिशनल प्रोफेसर शाह वली उल्ला जी, आपका स्पाइन सर्जरी में विशेष अनुभव है, आप इस विधा में काम कर रहे हैं, विशेषकर आप ऑर्थो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में। सर, बहुत बार जैसे हमारे परिवार में भी कई बार महिलाएं या कई बार हम पुरुष भी कमर दर्द हमें होता रहता है और हम बहुत बार इग्नोर करते हैं, तो हमें कौन सा वो कमर दर्द इग्नोर करने की आवश्यकता है और कौन से कमर दर्द पर हमें किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है, हम ये कैसे सामान्य तौर पर ये जान जाए?
2: मैकेनिकल बैक पेन होता है और एक स्पेसिफिक कॉज बैक पेन होता है। तो मैकेनिकल बैक पेन वो होता है, उसके भी कई वजह हैं, जैसे सही तरीके से ना बैठने की वजह से हो, या आपका पोस्चर गलत हो, या आपने एक्सर्शनल कुछ ऐसा काम किया, ज्यादा काम कर लिया, उसके बाद आपके मांसपेशियों में तनाव आ गया, उसकी वजह से हो। तो इसकी कुछ वजहें पीपल्स में अलग होती हैं, ओल्ड एज में अलग होती हैं। जैसे अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो एक ऑस्टियोपोरोसिस एक मेन कॉज है जो कि महिलाओं में ज्यादा होता है और जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसकी वजह से मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं और प्रायः हमने देखा है जो ओल्ड एज वाले व्यक्ति हैं उनको बैक पेन बना रहता है। अगर हम यंग एज की बात करें तो यंग एज में ज्यादातर ये आपका एबनॉर्मल पॉस्चर, जो आपका रहने का तरीका है वो गलत होता है कि आप रात भर मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं लगातार, आपने सही तरीके से लेटे नहीं, गर्दन पे तकिया सही से नहीं लगाया तो गर्दन में भी दर्द हो जाता है, कमर में भी दर्द आपका एबनॉर्मल तरीके से लेटने बैठने की वजह से होता है। अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स हो तो उसमें आपको वेट नहीं करना है, उसमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी। 10 से 15 साल से कम आयु का अगर कोई बच्चा है, अगर वो बैक पेन कहे तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अगर कोई प्रॉब्लम है और जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बड़े बड़े कॉजेज हमारे सामने आते हैं। तो यंग एज और दूसरा एक ओल्ड एज 60 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रायः देखा जाता है कि जैसे ओल्ड एज वाले व्यक्ति उनमें कैंसर हो या ट्यूमर हो उसकी वजह से बैक पेन हो जाता है, तो वो हमें रूल आउट करना होता है। फिर दूसरी चीज, अगर किसी पेशेंट को बैक पेन हो और उसके पैरों का चलना बंद हो जाए, उसके पैरों में सुन्नपन आने लगे, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत उसको कंसल्ट करना चाहिए। बैक पेन रात में सोते हुए इतना ज्यादा हो कि नींद ना आए, उस कंडीशन में आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए।

0: करेंगे, अगर आपका वजन लॉस हो रहा हो, बैक पेन के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, आप कोई काम करने में असमर्थ हो रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेने की जरूरत है।
1: जैसे आपने बताया कि भाई अगर गंभीर स्थितियां हो रही हों या जो लक्षण दिख रहे हों तब आप डॉक्टर के पास चले जाएं। अब यदि सामान्य तौर पर जैसा कहा जाता है कि भाई हम अपनी आदतों से या अपनी दिनचर्या से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं या प्रयास करते हैं, अब हम क्या अपने कमर दर्द को भी अपनी इन दिनचर्या से अपनी आदतों से, सामान्य तौर पर कमर दर्द विशेष वाले तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है और वो जो परामर्श बता रहे हैं या जो इलाज बता रहे हैं, सामान्य तौर पर हम वो अपनी दिनचर्या में कौन सी चीजें शामिल कर लें कि जिससे हम कमर दर्द जैसी बीमारी से बच जाएं या उसका प्रभाव हमें बहुत कम से कम हो।
0: अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अगर हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं तो 85% पेशेंट इसी पेन के साथ हमारे साथ आते हैं। केवल जो स्पेसिफिक कॉजेज जो हमने बताया तो वो केवल 15% है। तो जो 85% केसेस हमारे पास हैं जिनको ये नॉन स्पेसिफिक या मैकेनिकल बैक पेन होता है, तो इससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपको डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। तो इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो आप अपने में बदलाव लाएंगे और इससे जो इनके इफेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। जैसे कि आप अपनी दिनचर्या में सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। एक ये एक्सरसाइज करना सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है आपकी दिनचर्या में। फिर दूसरी चीज आती है एर्गोनॉमिक्स, बैठने का तरीका। तो आपका बैठने का तरीका सीधे तन के बैठना चाहिए, आपको आगे झुक के भारी वेट नहीं उठाना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 10-20 kg तक का वेट सफिशियंट है, बट बियॉन्ड दैट इसके ऊपर का वेट अगर आप उठाते हैं तो कमर की मांसपेशियों में दर्द होने की संभावना बढ़ती है। तो एक एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बैठने का तरीका जरूरी है, जो एर्गोनॉमिक्स है जहां पर आप काम करते हैं, आपकी कुर्सी की हाइट, आपके मेज की हाइट, आपके लैपटॉप का डिस्टेंस, ये सब उचित माध्यम पे होना चाहिए।
1: तो श्रोताओं मुझे उम्मीद है कि आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी होंगी और यदि इस तरह की कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप तुरंत चिकित्सक को दिखाएं, उनसे परामर्श लें, वो इलाज कराएं और अपनी दिनचर्या में ये चीजें शामिल करके आप कमर दर्द जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। आप इन्हें जरूर शामिल करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।
2: दक्षण सप्पा यंत्र देलुक सिहा गुरी मीडिया में का दिवा आकाशवाणी कर गिलिन कसता प्रोग्राम यह मजा शर्बान नचुंग प्रोग्राम फुच खान पुन असगर अली प्रोग्राम लाथुत बखान पुन सकीना बानो सकीना बेगम प्रोग्राम प्रोड्यूसर पुन गुलजार हुसैन।
3: अस्सलाम वालेकुम, आकाशवाणी करगिल कना फ्रोचुक पद पी शर्बा नचुनी प्रोग्राम पूछ बज लखुरे मां असगर अली यंग रसिचे गंतानास का तुस छनोत निजुना सलाम पु फ्रनोचन सोशिक रध्यामा जगत प्रोग्राम ज्ञानन जुगजुत खान शर्मा सुनसे काका फोनो अच्छे नमो सक नन में सन में तरगमो सन मोन बो जुगजुक तुक दिन सी शर्बा नचुनी प्रोग्राम प्यानुक सक पद सिक्स नला इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी जंजुसी मीना खाचन मत भी फैसला यक चिक से शासुक दिस को लंदन से पास पर आरिक यंग देर गया अपना नति यक्षरी मिथेन को गागा लसुने रोग नति फिजिक्स कोल बतंग दिस को ला असगरली खालू एमएससी इन फिजिक्स कोई कना फैसला त्रिस्वी कांग्रेस चुप भी फ्रेलुक्स बचा याले प्रोग्राम स्नावेन जुग जोत कनुन दिरिंग नचस नति मिथेन को दुना ngati माशेना नुक जंजोस युचस पुचाम छि खखचनिन देश कोला स्पेरारे क्लब चुपी फ्रलुक्स बेत जरबचिनतुक ngata ngati जंजोस पु ngata इंसानुनी मिछि गोमा स्कूल पु यानी गोमा शेल सबी मलसाव इंजरे जरबचिनतु गा फ्रुचिगिस उस्ताद दुना सोसाइटी कना शेसुन सबब सिक्स नल्ला जंजोस फेस संग आता आमा यंग दुना जंजोसी एमी छोनी कना तरबियत अर्गलुक्स इज्जत दुना दुक्सो लांजो चुक्स शेसुन सबचस इंसु दरसी दी गुक्सपा गुर्जा युमनुत पी मियुल पी का जंजोसी अहमियत पु या चमचि खाचन न दुनमा नमजा वसि गता स्केट फुबेल बिसी तबियरी मिंग ना जंजोसी चि खाचि दु अस्तास्पा चाचुक पी मिंग ना मियुली थोगी का मेल जे चोगा लोबिंगमा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जरबत पी दी फेस्पा जखपू सिया छाचुक छोसना गामिया नुक अतामी इज्जत एहतराम दुना खिदमत बचस पी का छसा बस युतंग यंग दीन इस्लामी सहमा शोबू कुरान मजीद यानु खुदा हिस्सा मजाद पुस कसल मुल बचेंदुक

0: एक बहुत बड़ा प्ले रोल चीन फिजिक्स ही जो मेन मांगा था मेडिसिन आम तौर पर याना पता हेल्थ एंड मेडिसिन याना सपोज यू सर बचेनो की या थों बचेन गाता गा दिस ना पसीन एम जोन एनो गाती मैक्सिमम यानी बुछा बोमो थर्मा सुनसे गाती एक माना सिंपल जर्मो चिका गाती जानलेवा छात्र जुया होशियत पिन सुजु क्योंकि देचनस इक्विपमेंट जो है ना इक्विपमेंट मत पना जो ते मशीन मत पना मेडिसिन मत पना जो की वजह से काम मैक्सिमम बीमारी इलाज में छात्र अब फिजिक्स की वजह से फिजिक्स इज माइक्रोस्कोप जैसी टेक्नोलॉजी एमआरआई जैसे सीटी स्कैन दी मशीन उन माना काफी जबरदस्त मशीन इन्हें नजर ना क्योंकि ये यूं फिजिक्स से लॉजिकल लेस बची नजर ना दी रिफ्री सीटी स्कैन या सेटिस्कोप जो आता ब्लड प्रेशर मेजर बेता जो दून सागज आता है गाती लाइफ को काफी एडवांस चुस्ता जो इसी से पता चलते हैं कि आता पता चलता कि फिजिक्स गाती जिंदगी में चाम से अहमियत जो पेन जो क्योंकि दक्षा दूत सोफ आता मशीन का तो एजाद सो जो कि गाती जर्रा न जर्रा नत आता पता चल सीटी स्कैन जर खनी मशीन बोल गाती बॉडी हर सेली हर पार्टी चीज बात सो इमेज को कुछ कैप्चर बात सो या कैप्चर बना दें आता पता चाहते जो कि गतिर हुई गा हिस्सा ची का या गतिर हुई गा चारी आता जख्म ची या जख्म ची दूग जरचस्प या आता नुकसान ची दूग जरचस्प आता तक्स पचे जो है तो इसी वजह से नुकसान आती डेड मोर्टिलिटी रेट पु आता कम सो गया मी शी चस्प या हर साल में कितने लोग मर जाते हैं जर्सी में जो दू दक्षा से नामजेन काफी कम पहला से नामजेन दू ज्यादा चाहते हैं दो मिन मांग आता दक्षा से नामजेन काफी टेक्नोलॉजी वजह से कर जो आता दी हेल्थ एंड मेडिसिन जेन काफी आता टेक्नोलॉजी उस खास तौर पे आती स्नापा से नामजेन आती डिलीवरी छे जो है वो मोस्ट ऑफ डिलीवरी छे काफी दिक्कत आता था या मैंने काफी मुश्किल आता है मत पिन जो कुछ हद तक तो ये भी कहा जाता है मतलब गति जैसे डिलीवरी दे सब मना जिसमो शायद मित्र लोकल गति गता जा खास जानकारी मत बना जो दी इक्विपमेंट और मशीन इन मत वजह से का गति काफी फीमेल्स डिलीवरी के टाइम पे बच्चे या फीमेल नेस का मतलब काफी डेड छात हुआ नक्शा समझे नो गता काफी मशीन के जरिए मेडिसिन के जरिए का अच्छा अच्छा खता इक्विपमेंट जरिए का फिजिक्स की वजह का आता दी नहीं एला शेजू दो मेन मांग आता है यार तक्सपाती शेजू कि फिजिक्स गति जिंदगी एग्जाम से एक इम्पोर्टेंट इन जू जरना क्योंकि गा जैसे कि गा दक्षा का जाना मजे सजो कि गति हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में जितनी भी इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है गति लगती होता जो बी पी चर्बी मशीन जर जो आता एक्सरे मशीन जर या सीटी स्कैन जर एमआरआई जर दी मिन मंग हजारों के तदाद में आता मेड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में आता बहुत सारे आता डिवाइस या इक्विपमेंट मशीन आता फॉर्म अच्छे दियो ये मशीन ही क्या है जर ना इस इन दी मशीन उन्हीं वजूद पुकारा बेसिक पुकारा फिजिक्स क्योंकि दी निर्गया ठीक बसलता ना फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट चोंच ना ना फॉर्मूले के उंचिन लॉ चोंच वही लॉ पे का दी दे लॉ को आते इस डिजाइन तां से मॉडिफाई बस से दी मशीन पुरचो से जो क्योंकि गयाना पहला जस देगा ती सीटी स्कैन मशीन में आम चीज अचिन दे मशीन पे आते हाई मूविंग पार्टिकल की वजह से दू आते सिंगाती पूरा बॉडी टिश्यू का स्ट्रैक छातो वहीं से हमारा वो रिफ्लेक्ट होके दूंगा आती सीटी स्कैन में कैप्चर आती इमेज को पूरा स्क्रीन का रास्ता नहीं जो है इस तरीके से बहुत सारे या नजरना अगर आते रेनरी फंक्शन चीप से लास्ट चार्ज जो बी पी मशीन बी पी चीप से मेजर बेट रिफ्रिजरेटर इस जंतु ग्राहमो चीप से जागर दर्शासुन या सीटी स्कैन आता अगर चुप चीप से आता आती बॉडी इमेज बिलता एक्सरे आता चीप से भी मजर चासुन दूनी फीचर याना ठीक बोलता ना बिल्कुल 100% फिजिक्स ही सिंपल लॉजिक फॉर्मूले की ऊंचा जिंदगी आकर्ष
1: दर्शक पाया अंतिस फिजिक्स

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और बिंदु का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और

0: borders. India's total exports comprising merchandise services are estimated at $80.8 billion in April 2026, registering a robust growth of 13.6% over April last year. And that is the end of this news bulletin.
1: दर्शन सपाई अंत आकाशवाणी देहली कना हिंदी ना अंग्रेजी नु खबर नीन मीडियम सोचिकना दु आकाशवाणी करगिल
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: जो तनाव अनुक मतलब ता हर किसी को कोई ना कोई मतलब इश्यू क्यों चीन या प्रॉब्लम क्यों चीन ता ओदो नुनी का अंगाते हागु एक तांग चाहे सिक्सेस चिक चुक्षी या गा चुक्स पॉलिसी या एक्शन चिको तो ता माल लखों बार को शा दुख जस्चस पो दे फिया दिन से दें जाक पोस्ट सी सुन सुजु या
1: जन जो चीज बना आता सब स्पेला दिया नु आता आमा थों दुख जु नियरी हिसाब के आती अमीर रोल पुजी का जुक जियो मर को
0: आ ता आमा जवाना जु आती ना सबसे जो मतलब एक फ्री की फिया जो एक मतलब रोल मॉडल चीजें ना या मतलब ना मतलब जिसको देख के बच्चे बड़े होते हैं तो वो दो सुन सु जब ना ना अमा खुरा इन सो क्योंकि गाती जब दे कि अमा अमे फंगमा मतलब पहला स्कूल इन जब दे तो मतलब अमा ना अमा दो सुख सुन सु या जिससे कि मतलब सुई इन ना या ना जंजो सुन इन ना मतलब अमे का ना हर चीज पलब सुन सु या तो दिया नुक चाहे अमा उस मतलब गजुक शिव से रंग फ्री तरबियत को तो बना दो माँ खाक चाह इन सुया नक्सन अगर नाते स्थानों को तो फॉर एग्जाम्पल कि चुन ला मतलब हर चीज से हागु एक तान चाहे ना या इनक्वालिटी से दखन नाते से जो कि दिन से दर जाक पोदर सी एक मकसद ची चीन सुस बना ता दीचिक से थीम पोखरा नाता ना देन ना जाक सुदु कि फैमिलीज इनक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग जरे 2026 ठीक दो तो आप मतलब नंता आती नंग खांबे ने कभी ता ख्या ची चोक शिजे चेक या पेशे ची चोक शिजे चेक ता दो देज अनि से जमाने अनु नन डूले ने यों सुन सुग और दक्षन ता मतलब स्थान गोतों आते जो दो काफी हद तक कम आंसों सुन सुग या लेकिन कहीं ना कहीं ता दू चोक शिसों सुन सुग की दक्षन कि हेला ता मतलब ता अब वो तंग आते जो मिजर कि ता अमाज हेला जान बूझ के करते हैं जरखन चोक शिक ता क्योंकि आती पहला ना अमा ला खुंती अमा नुनी का नदिया थों से ता लोप सियों स्पिन फला ता आते दिया चोक शिबा से ता हेला बुछा ला जाशे खाक चान रिक चोक शिबा से और बुमला बुलिक सिस्मे ची चोक शिबा से आते स्टेन यों सुन सुगया तो ओदे फिया मतलब अमे भी नंखांग बे अनु रोल पो एक बुमे गिन ना बुछे गिन ना निस्का डंडा इन जरे सोचास पे अनु सबसे पहला अमा खुरी रोल पो मा खाक चान इन सुजुया ख्यांग बुमु ख्यांग बुछा जरे मि फेचास पो और मतलब नंग पेंचियो न को तो बुमो बुछा निस्का डंडा बसे तांचा चाहे सा गिन ना जान छि गिन ना या चीन ना क्योंकि दक्षिण नाता मोस्टली थो इन दुगा अब ता जैसे गाती पर्टिकुलर करगिल को छोड़ के अब गहु सा अनु जगह जगह खचे ना कि बुछा सा मतलब गाती करगिल खास तौर पे करगिल ला सा आता से या मेना खचुल्ला जम्मू दिल्ली उन लाता से और नाती बमोनन दान ची वसे जक्सन उस बना दन यूल पुकुरिया नो या तो मिडिल स्कूल छे या तो हाई स्कूल छे ता से दन जुना लास पंगबादा ठीक छे नुजर खान चोक छे सना ते जक्सन दो या और मतलब तादक्सन अगर नतेल तानो को तो बुमेक माना 6-7 साल पर बुमेक न खुज माना नांगे दे जिम्मेदारी दे खक पुगांग मा खुरी गोय का खुरिन दो गया और मतलब अगर नते बुछे गलता न खो बक्सतोन चिबा से नांगे अतेक दानि नंग फिर भी दे संभव यो म मिंदुक पाता कि हेला कि दुनी का जिम्मेदारी इन जस्टस पोचे से फॉर एग्जांपल को तो जन या नते जान चि फिन से लाता जानों दे जोसने थाली नों दे का फांसे को लांसे चाचाओ मतलब ओ चोक शियो एन दुक पा ता अब दे न नुंगाती ना दे बुछे गलती में ना दे बुमे गलती में ता दो नाती ची सों सों सों नाती नांगे ता छुनचे न अमाउस बुछा लस चेस बा सेवा नो नो खेस मा थिन ख्यांग से दुक बुआ छेस बा छिन नोमोस बा छिन सरेन दुक पासा तो दो आदा ची चोक शी सों सों छला ता दुंगी लास मेन दु नोमोस बा छिन या बुमोस बा छिन जर खान चोक शी तो अगर मदल ता न 1-8 साल प बुमेक ना 30-35 साल पर बुझे की संभव माना एक हुई चोक शिक्ता मतलब नांग है ताला से एक हुई आंसर इन तब बोमो माना जान वंजो से ने थाली थे चा घोंचा न चा जाम बचा चा बचा खुचा दोनों ने नुमा बोमो से लाता दुंगारी लाजिन दुंगारी जिम्मेदारी दुंगारी का खाक चीन से संभव चोक शिवा से बोमो माना ओदे का एक हो बसे बेंदु जुया
1: ना बाकी ज्वेलरीज लेकिन अच्छा सा बस मूल्स दरिंग आता ची छाना का तो आता अम्मा सा ज्वेलरी जरूरतों पो दरिंग आते स्नान पे अम्मा खेत दिवोस दरिंग आते छेन छाना का तो माती रोल पे क्या रिक्पो माती आमिर
0: नॉन डिस्मो है जो
1: बाकी है कैसा जूनियर दरिंग ती ऑफिस लजर ना का तो दरिंग आता हुकूमती जो तो स्कीम का तो या जो तो एक्ट का तो लेकिन मग मिक्स जो सोमा था जो गाँव माती जानजोस फिला या आता अच्छी नुमोनी फिला जाम ची फन की बेटी
0: अब दक्षिण तानो को तो मतलब गातंग बोमो सकफिया माना द स्कीम जेरे दक्षिण बहुत सारे स्कीम संग यों छेन दु गया जिसमें कि चाहे खो मतलब बोमोन इकोनॉमिकली अफली पे फिया ना या मतलब हर चीज संग ना जैसे फॉर एग्जांपल दक्षिण गाती मिशन शक्ति जेन जो खो रंग यों सोच या दे अनुगाती वन स्टॉप सेंटर जेन जो और बहुत सारे ओदे अनु यहां सब स्कीम आ यों सो दे तब मिशन शक्ति मकसद पुखरा दे अनु सो कि बोमोन ला इंपावर चिक बे अब इंपावर गजो बे जवाना खो स्किल चिल सब्जेक्ट क्योंकि गाती का महज नाता बोमोन हमेशा इन्फियरिटी दे फिया लुसुन सु क्योंकि नाता

अमित पमना बड़े छिन सोस ना तनखो चाहे गती रुस्पे के उतना रुस्पा आनु को मतलब ग्रोथ पसों से सों से स्वेलिंग दंचिन या मैदे आनु के उतना दुखुरी आनु ग्रोथ दंचिन या गती स्त्री इन न दे आनु जुगा को शे गुच्छाल दाने इन सों से सों से देख ना दो सों से या ना दो क्राई थ्रू गती लिम्फ जिन चों चिनो गुदुती थ्रू सों सों

0: tuir cha na dekna nga thang do chok cha nga cha matlab association thong ki ngati namkin cha kho do cup 3 cup 4 cup 5 cup cha pa haram les matlab cha noksan mit 5 ekna zyada ngati chethung excess cheton har cheez pe ram pata de ngati mimans gangma pata excess hamesha noksan ta so masun dekna ngati culture pe anu dadini yang trenches on su bakston in ya la shi jar chigin ya yang nang ston chin na excess मतलब शाना मतलब फेटी मिल तांते फेटी मिल मन ज्यादा मन शानो गांस आ मतलब फ्रूट में या वेजिटेबल्स के ध्यान में सिर्फ दे मन तेल तांचा दे कसम केमिकल ना मतलब हां मसाला जाना इसका के दोन तांचा कलरिंग एजेंट तांचा ध्यान तेल पे बार-बार शाना चिकन उन फ्राई बिंदुचा सबसे ज्यादा मुजर दुख ना तेल पे बार-बार ध्यान उक्षाता इन फ्राई बिंजक मन तेल पे उबलाई छेन दुख से ध्यान केमिकल गती रिएक्शंस मन मंगमो छेन दुख ध्यान गती केमिकल ज्यादा भी छाना मतलब शे अनुची हो जिसमें मैक्सिमम फैटी हो जिसमें फैटी सैचुरेटेड फैट ngata yang phet chon chin gao ngata ar gyala in ngati phila protective polyunsaturated fatty acids jachin ha omega fatty acids jachin don met khan phet saturated dose ngata noksan ta so masong chana uda sosla malap ngaz mi mang sun lazret ki ngata nam sam dawat ta ngata tis malap khachulish pe mi bacha khuchi ut ngata ngata waxton ta ngata chi ta ngata sadaqe ginde ngata ngati da shorba na ngati da khini na ngati qorma chana dikchin excess po ben chik chikan na ngati zarchen na tabak mas na malap kaba गाँव अति तेल दुगेत या ज्यादा फेटी मिलता अंछा ना इंसान इससे हजिक पद ज्यादा छिद दे यूल यूल लो दिन खुए कहीं लो आज के खुए कहीं लो फाते छाना इंसानी चिकपन हैबिट चेंज इस पर फैट चढ़े छे देखना कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा छे ये फैट पर मार सौ पे नहीं आज ना फैट पर सिर्फ कैंसर विकास सच में खोज ना शुगर आम सचिन डायबिटीज खोज ना हाइपर टेंशन आम सचिन खोज ना अति हार्ट चाने का शख्स हार्ट अटैक आ छाना जिस कम्युनिकेबल डिजीज संग खिमो छा देखना ngatis ngati ngati ग्यूमा ने कैंसर पा ngati चिस्ना अतापोन इस खुला पापा पुली जात दो ngatis जर्चिन साइंस यंग ग्याला चीज हाई फाइबर डाइट जर्चिन दोन इस ngati ग्यूमा ना ngati रेक्टम में ngati कैंसर उनमा चिस्ना कम है पिंचो दक्षा खुला पापा पुली जर्बे ता ब्रोन ना स्क्रो दोन सब थांग मना कुलिया सिर्फ राइस सा बेंदुक पना पॉलिश राइस सा दे बेंदुक पना कुलिया ngata उदी कैंसर उनमा बढ़े छिन दोन ngati वाला बाजारी जंक फूड ना ngati मतलब टीनेट फूड जस्ट में ना प्रिजर्व्ड फ्रोजन फूड उन ngati मतलब कलरिंग एजेंट्स उन छान दोन सक ngati मीमांस उन इस्तेमाल वाना छान ngati उदी कैंसर उनमा बढ़े छिन दुख ngati युल्ला तुतपा ना दोन सक बंद कमरे अनु ग्राम में होता जर बंद कमरे छान हवा फोक पी जागी मन जरूरी सो दोन स्मोकिंग ने यारा पता दोन सक से अल्कोहल पांग सक से ngata कैंसर काज बचिन दोन दांग खुदा ने इमाम शजदा करगिल बेल्ट पेन कम युत ngata सक से जांसकार बेल्ट बाकी बेल्ट ने अनुंग ngati मीमा सुन ला जुआ बच्चे ची बसंग अति दे उक्सिंग उन ची बसंग कम ये बन बच्चा छाना हर चीज फैक्टर यौन तो गया
1: कस बख्शी जर मैंने फेस्ट पर बस मुझे जो बख्शी जर
0: बख्शी से चल
1: दिया ना टीसों ने बहुत दिलिंग सी साइंस मैगज़ीन ही प्रोग्राम ही वक्स पुत हम आते होने दो दिया मज़ा जगह दिया तंग दिलिंग सी प्रोग्राम पर दे मत सोरे दिका ना फन खेले ने दुख तोत नन में चन में लुस ना यौन में भी तो सुने उनक यहाँ समा खातु शुक्रिया तंग ने बहुत हुक जाए दे मन पुंगा इज इन चेस दे बोल या जो खुदा नर सामानी फगरिया

0: rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun local in ya fayuli thokikain akashwani stanchain customer un sapille piece cups mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: ایلومس بنینو انسانی رخص بچائیں حضرت علی مرتضی علیہ السلام میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائیں حضرت علی علیہ السلام تانے حق پزر تاکی یرانا ریال تھوپ تو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों का प्रोग्राम सुनने वाले तमाम सामिन को मेरा प्यार भरा आदाब। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में सिर्फ तुम फिल्म से एक गीत सुनते हैं, जिसे गाए हैं जसपिंदर नरुल्ला और साथियों ने। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम शवन।

लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का अगला नगमा नमक हलाल फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में सुनते हैं। प्रकाश मेहरा और अनजान के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है बप्पी लहरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कुणाल गांजावाला शान और कृष्णा को फिल्म दीवाने हुए पागल फिल्म से। लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का आखिरी नगमा सुनते हैं मुस्कान फिल्म से, सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवरा है निखिल विनय ने।

0: दसन सपाइन तेज प्रोग्राम यूट्रूस महमूनिफिया मीडिया में का दुआ आकाशवाणी करगिली वस्पो तुसना मीनिंग जगह सोसु कसता आकाशवाणी देहली कना हिंदी अंग्रेजी दोनों उर्दून खबर लेबे लीला डांबाजार
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया।

0: मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय

0: समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री बजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। 6 गुना वृद्धि।

0: से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर-17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर-15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in China.

0: The Indian Wushu team delivered a commanding performance at the 11th Sanda World Cup, winning 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals in Macau. The women athletes in particular put up a stellar display by securing both gold medals from the 6-member contingent. In the women's 75-kilogram category, Border Security Force athlete Shivani defeated a Russian opponent to clinch the gold medal. Aparna also produced a brilliant performance in the 52-kilogram category to secure India's second gold medal. In the 48-kilogram category, Indian Air Force athlete Kushal Kumar claimed silver medal. At the Asian Under-17 Boxing Championships, Indian young boxers concluded their historic campaign today by winning 2 golds and 7 silver medals in Tashkent, Uzbekistan. India also bagged 8 bronze medals in the Under-17 category. With this, the total number of medals won by the boys and girls teams of the country combined reached 17 in this category. Earlier in the Asian Under-15 Boxing Championships, India won a total of 27 medals, including 9 gold, 6 silver and 12 bronze medals. In Asian Weightlifting Championships, Harjinder Kaur won bronze medal in the women's 69-kilogram category snatch event by lifting 96-kilogram in Gandhinagar today. Harjinder also lifted 121-kilogram in the clean and jerk event and finished fourth overall with a total lift of 217-kilogram. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals in Bangkok. They defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153-5 in 18 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Piprawa relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics, making it one of the largest spiritual gatherings organized in the Union Territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालिया पर्चा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मौतल कर दिया है। मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुर्मुज

0: प्रोटोकॉल नाफिज किए जा रहे हैं जिनमें बैन अल-अक़वामी एंट्री पॉइंट्स पर करीबी निगरानी भी शामिल है। हुकाम ने जानवरों के जरिए कुतरे गए लोगों या शदीद खतरात वाले इलाकों का माजी में सफर कर चुके लोगों को मशवरा दिया है कि वो तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसी अलामत नजर आने पर फौरी तौर पर इलाज कराएं। भारतीय महकमा मौसमियात ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में कल गर्म और मरतूब मौसमी हालात की भी पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने अंडमान और निकोबार जजायर में कल इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। इसके अलावा केरला, माहे, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरकी खित्ते के कुछ हिस्सों में भी अगले दो दिन के दौरान इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरकी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, लक्षद्वीप, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी की भी पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून के इस महीने की 26 तारीख को केरलम पहुंचने का इम्कान है। इसमें चार दिन की कमी बेशी हो सकती है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान के समंदर और अंडमान निकोबार जजायर के बाद हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय वुशु टीम ने मुकाऊ में 11वें सांडा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के दो, चांदी का एक और कांसे के दो तमगे जीते हैं। भारतीय खवातीन एथलीट्स के 6 रुकनी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के दोनों तमगे जीत लिए हैं। खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में बीएसएफ की खिलाड़ी शिवानी ने मुतासिरकुन महारत और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपनी रूसी हरीफ को हराकर सोने का तमगा जीता। दूसरी खातून भारतीय खिलाड़ी अपर्णा ने भी 52 किलोग्राम जुमरे में मुतासिरकुन कारकर्दगी की बदौलत भारत के लिए दूसरा सोने का तमगा जीता है। इधर 48 किलोग्राम जुमरे में भारतीय फिजाइया के खिलाड़ी कुशल कुमार ने चीनी हरीफ को शिकस्त देकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के दो और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबोहवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालनामा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: میڈیم ایک دعاکاشوانی کرگلین وقت پو چھانی تسر گونہ فیسنسو کسا تا پروگرام یا مزد کرگل نامہ

0: Joshogun Statin di itihadi consular runyang Indian National Congress di consular chukshik yang National Conference Councillor Ghe Hemayatika No Confidence Motion Ni Mingna Deputy Commissioner Kargili Dunla Nasir Hussein Munchi Qayada Tengnuk Di Shokshokpo Statin Di Tehrigi Yoga Itihadi Committee Goba Wa Rukune Parliament Ladakh Haji Mohammed Hanifa Jan Na Congress Senior Leader Haji Asghar Ali Karbalai Duna Congress Na Conference Councillor Unangde Seyot Pin Di Skore Anuk Press Conference Yang Gunde Kamal La Kyonskhan Inmin Yang Deyabar Anuk Chief Executive Officer LADC Kargili Dunla Executive Consulary Ohde Kalas Binot Khan Kacho Mohammed Feroz Na Executive Consular Zakir Husseinis Kunti Istifaunang Statin Yang Dir Mang Piskol La Salpo Basazer Inchik Member Parliament Ladakh Haji Hanifa Jan
1: Pre-election Hamne Coalition Kiya Election Bhi Hamne Saath Mein Lada Election Ke Baad फिर बाज़ब्ता तौर पे चूंकि ढाई ढाई साल क्या हमारे काउंसिल रखना था दोनों में डिसाइड हो गया था कि ढाई साल एनसी के ढाई साल कांग्रेस के जो चेयरमैन होंगे तो उसमें उस वक्त हमारे सामने एक चीज़ आई थी कि भाई पहले जो काउंसिल है जो चेयरमैन किसका होगा बनाएगा तो उस वक्त भी हम लोगों ने हमारे कमेटी ने हमारे कायद ने हम सब ने अपने पार्टी लेवल पे ये डिसाइड किया कि हम कांग्रेस से बात करके जो है ढाई साल पहले वाला हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम लाएंगे तो अकॉर्डिंगली हमने नेशनल को ये कांग्रेस के साथ खासकर कांग्रेस के कायद करबली साहब के साथ जाती तौर पे मैंने बात किया था उसके बाद हमारे कमेटी बनी जिसमें हमारे रसूल साहब थे फिरोज साहब थे आगाबा साहब थे टशी साहब थे हमारा कमेटी बनाए के हमने आपस में हमने बातचीत किया और रिक्वेस्ट हमने यही किया कांग्रेस को कि जो ढाई साल का जो ये काउंसिल है वो हमें दिया जाए तो खैर उस वक्त काफ़ी बातचीत के बाद कांग्रेस ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया ढाई साल का चेयरमैनशिप तो उसी हिसाब से हमारे एग्रीमेंट बनी जिस एग्रीमेंट पे हमारे कमेटी ने हमारे लीडरशिप ने साइन करके जो ढाई साल है बहुत ही स्मूथली दोनों पार्टी मिलके हमारे सीसी साहब की क्यादत में बहुत अच्छा काउंसिल ढाई साल चला जिसमें हालांकि चैलेंजेस बहुत थे इस काउंसिल के पास मैं कहता हूँ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से भी बहुत ही अच्छा काम ये ढाई साल में एक उस कोएलिशन ने किया ढाई साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास था वो ख़त्म होना था उससे पहले कांग्रेस ने अपने एक लेटर के जरिए हमें अप्रोच किया और ये बताया गया कि हमारा जो टेन्योर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ख़त्म होने जा रहा है तो उन्होंने पावर ट्रांसफर के लिए जो है हमें लेटर लिखा कि हमारे अपने पार्टी के अंदर भी हाईकमांड से हमारे बातचीत चली और इतना वफा इसमें लगा इसके बाद चूंकि सीसी साहब ने इसको रिज़ाइन करना था लेकिन रिज़ाइन नहीं हुआ तो हमारे हाईकमांड लेवल पर यह डिसाइड किया गया कि जो है पार्टी इस कोएलिशन को कभी नहीं तोड़ेंगे हमारे एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी वादे किए हैं पार्टी हमारे हाईकमांड का जो डॉक्टर साहब का हमें ये डिसीजन ये था कि उसी हिसाब से जो है वो पावर ट्रांसफ़र करना है आज हमने डिसाइड करके चूंकि रिजन नहीं हुआ सीसी साहब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें पेश करना था तो उसमें हमको ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं था सिंपली एक मेजोरिटी अगर वन थर्ड पे भी चलता था लेकिन हमने सिंपल मेजोरिटी से जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हम पेश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे जाके पार्टी में भी हम बात करके सीसी साहब खुद रिजाइन भी हो सकता है या हमारे बाकी काउंसलर्स भी इंशाल्लाह आगे जाके ये उम्मीद है कि हमसे जुट के फिर से जो है खासकर जो हमारे करगिल के इत्तेहाद लद्दाख का इत्तेहाद जो है वो इसको और मजबूती से आगे ले जाने में सबका जो कंट्रीब्यूशन वो रहेगा
0: नेशनल कांग्रेस की सीनियर लीडर हाजी असगर अली करबलाई
2: फर्स्ट टर्म खत्म हो चुका है सेकंड टर्म कांग्रेस की है और ये पावर ट्रांसफर किया जाए उसमें थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ बातचीत हुआ गुफ्तगू हुई और इन सारी गुफ्तगू और बातचीत का जो एंड रिजल्ट है जो कोलिशन है एज इट इज है चूंकि हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने एज पर द एग्रीमेंट इनको रिजाइन दे के पावर ट्रांसफर्स करनी थी वो अभी तक इन्होंने रिजाइन नहीं दे दी तो फिर इसके बाद एनसी के हाईकमान और एनसी के डिस्ट्रिक्ट जो एग्जीक्यूटिव है और हमारे कांग्रेस के सबसे